0: लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, सालों में तो सा बन गया, सालों में तो सा बन

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सन बंध।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें एक नाम जगदीश।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Greater London. This is Cardinal on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning, this is Cameron McGarvey here, starting with the M11 southbound just before Junction 4 for the North Circular. Delays with a travel time of around 15 minutes, and the North Circular itself looking slow westbound at the Clockhouse Interchange, and again adding 15 minutes to your journey. M4 onto the elevated section eastbound, particularly delays now from Junction 3 for the A312 at Hayes to Junction 2 for the A4 at Brentford, and then A13 at Dagenham westbound, the user congestion now from Raynham to Barking and on the Lodge Avenue flyover, and tubes Piccadilly line due to an operational incident, severe delays between Heathrow Airport and Uxbridge and Heathrow Airport and Acton Town.
2: Yeah, like a gold.
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus, gamble aware.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 020-8574-8410।
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: पत्नी
9: प्रीमियर लीग शोज एट राइसलीप अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोर होम लेस्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर के फर्नीचर.co.uk पर जाएं।
15: जदों भी कॉमेडी मूवी की गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
16: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
17: पर टिलो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
15: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
18: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
19: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks, playtime's over. Lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
7: 18 plus gamble aware.
8: Welcome to the jungle.
9: Film bilkul fake.
8: Hamari film army wali. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
9: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
8: और स्टार कास्ट है
9: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्षद वारसी परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
9: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ
11: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
12: मैं किस लिए फिल्म में
13: Just 3 days to go.
14: Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
14: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
13: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
15: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
17: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
18: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty, and total desi swad in 4 mazedar flavors.
17: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
19: Chai break हो या busy work day, सबको चाहिए एक perfect cup of chai.
20: और अब Royal Chai लाए हैं smart solution for your business.
19: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
20: Rich, authentic taste every single time.
19: Royal Chai, brewed for business.
20: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
21: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
22: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out. And so are the summer hits on Laika Gold.

0: Rogers Morning Mantra presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: वेलकम टू द जंगल.
4: फिल्म बिल्कुल फेक.
3: हमारे फिल्म आर्मी वाली
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
15: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
17: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल.
16: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: Just 3 days to go.
6: Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.

0: Like a gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: Cool music for a super hot summertime. On Like a Gold, Gold Breakfast with Kajal. Like a
12: Gold. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: तो आपको बताते चलें कि आज लंदन में मौसम सनी रहने वाला है और कुछ बादल भी छाए रहेंगे. मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्रीज तक जाएगा और मिडलैंड्स में आज टेम्परेचर रहेगा अराउंड 23 डिग्रीज.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: TravelHub.
4: At all protected.
3: Leica. Leica Radio Network. Broadcasting across Greater London.

0: भाई अभी अभी तो मैं आई हूँ और अभी फिलहाल तो मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए फिक्र करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी अभी तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। वेंसडे का दिन है और आज है जुलाई महीने की पहली तारीख। कैन यू बिलीव, जुलाई महीने यानी कि साल का सातवां महीना शुरू हो गया है और देखिए कुछ महीने और बचे हैं एंड देन फिर हम नए साल में आ जाएंगे। और हमेशा हम यही बात करते हैं कि समय तो जैसे पंख लगा के उड़ रहा है। एनीवेज, हफ्ते दर हफ्ते समय आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसी का नाम जीवन है। बस ये चाहते हैं कि आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी समय मिले हमारा साथ देते रहिए। ये है आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, जहाँ पर एक बार फिर से मैं ऋतु शर्मा आपके साथ हूँ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर गए हैं, नेक्स्ट वीक से वापस आ जाएंगे, तब तक मैं इस शो में यानी कि उनके मनोरंजन शो में मैं आपका साथ दूंगी। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और बस आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ गए। इनफैक्ट कई लोगों ने तो आने से उसके आए बाहर गाना मुझे डेडिकेट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहूंगी, ये आप सबका प्यार है और इस प्यार को बनाए रखिए। थैंक यू।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 125.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको ब्रांच में जाकर ऑनलाइन या फिर उनके योनो मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज इंग्लैंड और DR कॉन्गो के बीच में मैच है। ये मैच शाम को 5 बजे से शुरू होगा और आज बेल्जियम और सेनेगल की टीम भी भिड़ेंगी। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
4: This Saturday, Lotto is making a guaranteed 10 millionaires. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millionaires guaranteed to be made this Saturday. New Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules apply. 18 plus.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Gorgeous Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
3: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit gorgeouscouture.co.uk.
4: Welcome to the jungle.
5: Film bilkul fake.
4: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: और स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में?
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन. लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
14: London, good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
16: 4 beers, please, garçon!
15: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कुमार शानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी।
1: तुमसे कहूँ तो मैं इन आँखों में जो रहूँ तो।
0: इस फिल्म से था ये गाना और इसमें गाने जो थे वो आर डी बर्मन के म्यूजिक पर थे, यानी कि कुछ ऐसी धुनें जो आर डी बर्मन ने बनाई थी लेकिन उन गीतों पर बोल नहीं बिठा पाए थे, ऐसी धुनों को लेकर इस फिल्म के गीतों को बनाया गया। और देखिए तभी तो ये गाने क्या मधुर हैं, कितने

0: रवि शर्मा जी, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन पर भी मेरी नजर जाएगी, लेकिन फिलहाल सुनाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबरें भारत से। देश भर में मानसून का तांडव जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत सहित देश के 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल से कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी मानसून पट्टी बनने से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। वालकेश्वर में एक इमारत की बालकनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की जान चली गई है। आज 1 जुलाई है और 8 से देश में नए नियम लागू हो गए हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों का समय बदला गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के बैठने का रोस्टर शुरू हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बस और एक ट्रेलर की आमने सामने टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ खबरें दुनिया से सुनाते हैं। वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उससे भारी तबाही मची है। वहां पर आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,943 यानी कि 1,943 हो गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद अमेरिका में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, और यूरोप में हीट वेव जारी है। यूरोप के कई देश इस समय अत्यधिक गर्मी और ओमेगा क्राइसिस जैसी हीट वेव की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिससे बुजुर्गों की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उधर ईरान में हालिया तनाव और युद्ध के बाद के घटनाक्रमों के बीच वैश्विक नेताओं की नज़रें वहां की राजनीतिक परिस्थिति पर टिकी हुई हैं। और आपको कुछ और खबरें सुनाते हैं भारत से। आज LPG सिलेंडर के दामों में भारी कटौती हुई है। आज 1 जुलाई से कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के दामों में 183.50 की बड़ी कटौती की गई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत 3,113 से घटकर 2,930 हो गई है। और आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फ़ोन पर बात की है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता पर चर्चा की गई है। आज 1 जुलाई है, और आपको बता दें कि आज भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के योगदान को सम्मान दिया जाता है, और ये दिन महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। और आज से भारत में पेड़ लगाने का एक हफ्ते का राष्ट्रीय उत्सव यानी कि नेशनल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है, जो कि 7 जुलाई तक चलेगा। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: हंसो मत, बोलो।

0: 1970 में आई थी ये फिल्म शशि कपूर और हेमा मालिनी की। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब हेमा मालिनी शुरू शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के जितने भी हीरो थे सब उन्हें देखकर काफ़ी क्रेज़ी हो गए थे, मतलब उनके दीवाने हो गए थे ऐसा मैंने पढ़ा है। और उन्होंने सब में क्रेज़ था कि हमें हेमा मालिनी के साथ काम करना है, और उसमें सबसे ऊपर नाम शशि कपूर का था। और काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी जब उन्हें हेमा मालिनी के साथ फिल्म करने का मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बहुत जुगाड़ लगाई, कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की कि भाई मुझे उनके साथ ऐसे हीरो काम करना है, और तब जाकर उन्हें इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। और ये फिल्म पता नहीं चली थी या नहीं चली थी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक हो तो गाना खूबसूरत होता ही, और ये गाना भी बड़ा सुंदर था जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो से। और आपके ढेर सारे मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं, थैंक यू। आप गीतों को पसंद कर रहे हैं, आप शो को पसंद कर रहे हैं, तो बस मैं क्या करूँ। चलिए बात करते हैं आपकी आपके मैसेजेस की।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: तो भाई सबसे पहले आज हमें मैसेज भेजा है हमारे वियाना से अनिल सोनी जी ने। आप हमेशा ही प्यार से प्रोग्राम सुनते हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भारत से हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जी, जो कहते हैं ये गाना तो अच्छा है, आपको पसंद आया, क्या बात है, एंजॉय किया, थैंक यू। आपने क्या लिखा है कि मूवी भी अच्छी थी, ये अभिनेत्री अच्छा आपने देखी होगी। मैंने तो क्या है कि ये 60s, 70s, 80s की बहुत ही कम फिल्में देखी हैं, मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ। अगर मुझे पता चल जाता ना कि ये फिल्म अच्छी है तभी मैं देखने जाती हूँ, नहीं तो मुझे 3 घंटे तो पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, उससे बेटर तो मैं गाने सुनना पसंद करती हूँ। तो समझ लीजिए शशि कपूर की, शम्मी कपूर की, राजेश कपूर, राजेश खन्ना की, दिलीप कुमार धर्मेंद्र, ये जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं इनकी मैंने कोई भी फिल्में नहीं देखी हैं, सिर्फ 1-2 फिल्मों के अलावा, लेकिन गाने मुझे सब फिल्मों के बेहद पसंद है। तो थैंक यू, आप कह रहे हैं अच्छी है तो मैं मान लेती हूँ। विजय कोनवा जी थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। भरत गंगाराम जी धन्यवाद। मिसेस शेख याद दिला रही हैं कि ऋतु आज 1 जुलाई है, हाँ आज 1 जुलाई है, मुझे याद है। प्रज्ञा कहती है मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी आ गई हूँ, स्वागत है प्रज्ञा। नरेंद्र भागिया जी आपने हमारे साथ आज भी 4 लाइनें शेयर की हैं, और आपने अर्ज किया है, पढ़ते हैं क्या अर्ज किया है आपने, कि वक्त फिसलता है रेत की तरह, हम बस उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग बहुत खास होते हैं जिंदगी में, हम बस उन्हें बताना भूल जाते हैं, और ऐसा अक्सर ही होता है। कभी कभार इंसान बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, बहुत तारीफ करना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये अक्सर ऐसा होता है पति पत्नी के बीच में भी, कई साल बीत जाते हैं शादी के बाद, और जब कुछ बहुत अच्छा पत्नी करती है या पति करते हैं तो एक दूसरे की कभी भी कोई तारीफ नहीं करता है। तो करनी चाहिए, बस वो कह लेते कि ठीक है क्या तारीफ़ करना, अभी घर की हमारा ही तो पति है, हमारी तो पत्नी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने भी कोई ऐसी काम किया है, कुछ ऐसी बात है, तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। आप छोटी सी बात कहकर किसी को बहुत खुशी दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमसे तो तारीफ ही नहीं होती, तो ये सीखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन आप किसी को बहुत खुशी दे सकते हैं। अगर छोटा सा भी काम किसी ने अच्छा किया है ना, तो कर दीजिए ना तारीफ, क्या बिगड़ता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हम बात करते हैं सहर जी की। हेतल सोलंकी स्वागत है आपका। अर्जुन जी, प्रदीप जी ब्रैकनेल में सुन रहे हैं, चंदू शाह जी, हंसा जी, फारूक जी, आपने भी वो गाना मेरे नाम कर दिया है आने से जिसकी आए बाहर, क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और ये कौन है जिन्होंने नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा, नंबर एंडिंग 529, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू शेखर आनंद जी, थैंक यू मृदु जी, आपने भी बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने निकल आते हैं, वरना मुस्कुराहट का क्या है, वो तो गैरों के मिलने पर भी चेहरे पर आ जाती है। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू महेंद्र पटेल जी, थैंक यू वजाहत, हरीश खत्री जी थैंक यू, और जितने भी साथी घर में, गार्डन में, बाहर, काम पर, गाड़ी में, दुकान में, जहां भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है, सभी को कहती हूँ गुड मॉर्निंग।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: तो अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो भाई हम आपको बता रहे हैं कि दुबई के पास जाइए, दुबई नहीं, साउथ ट्रैवल के पास जाइए और दुबई की अच्छी डील्स के लिए बात कीजिए, हॉलीडे बुक कराइए। उनका नंबर है 0208-574-8410 और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Yeah, hey, like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Just 3 days to go.
5: Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Great news, Tariq Kalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Kalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Kalal Raiders Lane.
7: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
6: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio.
8: जय श्री स्वामी नारायण। सेफ्टी डेट संडे 19 जुलाई 2026 एनुअल रथ यात्रा के लिए भक्तों को मिलेगा पवित्र अवसर भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को हैरो और ब्रेंट की स्ट्रीट्स पर खींचने का। यात्रा शुरू होगी SKSS टेंपल कैंटन हैरो से और पूर्ण होगी श्री स्वामी नारायण टेंपल स्टैनमोर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दोनों टेंपल्स के सोशल मीडिया और वेबसाइट्स SKSST.org और stanmoretemple.com विजिट करें। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामी नारायण।
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: But how? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: Be part of a historic grand opening.
14: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
14: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
16: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
17: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: यस्य कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में चमत्कार फिल्म से था ये गाना और फिल्म अच्छी थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे, अनु मलिक का म्यूजिक था। और आजकल उर्मिला, आजकल नहीं, लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीकेंड पर उर्मिला मातोंडकर IBD यानी कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आई थी और उनके गानों पर क्या डांस किया था बच्चों ने। मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी परफॉर्मेंसेस देख देख के, और इस गाने को देखकर मुझे वही शो याद आ गया। और आपने भी गीतों को पसंद किया है, थैंक यू भावना। आपने कहा है कि यस तारीफ़ करनी चाहिए कोई काम करे, लेकिन मतलब अपने लोगों की, पर कई लोग फेसेस बना लेते हैं, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप बस अपना काम कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू साथ देने के लिए भावना जी, आपने बहुत सही लिखा है। वैसे अरुणा जी हमारे साथ हैं, मनोज जी क्रॉयडन में सुन रहे हैं, जर्मनी में प्रमुरन कपूर है हमारे साथ, हैरो से दिव्या है, राजीव पटेल जी हमारे साथ हैं, एंड फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू, ज्योति पटेल जी थैंक यू। और बस अब बढ़ जाते हैं आगे, और थोड़ी ही देर में यानी कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में चिंतन भी होगा, लेकिन उससे पहले
1: ये है Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Like a Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £96.7 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Like a Gold.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana, original music breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
14: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
16: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
17: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty, and total desi swad in 4 mazedar flavors.
16: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
18: Sona Tours, .co.uk, Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
19: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
20: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स. और इस शो में आज एक बार फिर से ऋतु शर्मा आपका स्वागत करती है, सिटिंग इन फॉर रवि जी. ये समय है चिंतन का, यानी कि आज के विचार का. और आज के चिंतन में एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें मैसेज बहुत खूबसूरत है. और ये कहानी है राहुल की. राहुल जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, एक दिन ऑफिस में उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ. बॉस ने उसे बहुत डांटा भी, और ये बात राहुल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. राहुल बेहद निराश और गुस्से में घर लौट रहा था, और रास्ते में मन ही मन किस्मत को कोस रहा था कि भगवान ने सारे दुख मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए हैं. बहुत परेशान हो रहा था, इतना गुस्सा उसे आ रहा था कि बस पूछे मत. चलता जा रहा था, और तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया. सोचिए, एक तो इतना गुस्सा, बॉस से डांट खाई, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद गर्मी में गाड़ी का टायर पंचर हो गया. अब तो राहुल के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था. तपती धूप में गाड़ी से उतरकर वो झल्लाहट में और चिल्लाने लगा कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है. और गाड़ी को छोड़कर वहीं पास में एक पेड़ की छांव में बैठ गया. उसने देखा वहीं पास में एक छोटा सा लड़का, जिसके दोनों पैर नहीं थे, एक लकड़ी के फट्टे पर, यानी कि व्हील चेयर जैसा उसने बना रखा था काम चलाने के लिए, उस पर बैठकर अखबार बेच रहा था. राहुल उसे ध्यान से देखने लगा. उसने देखा उस लड़के के चेहरे पर एक गजब की चमक और मुस्कान थी. वो हर आने जाने वाले को बड़ी उत्साह से अखबार दे रहा था. और तभी उसने देखा कि एक राहगीर ने उस बच्चे को अखबार के पैसों के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया. बच्चे ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया, और उस राहगीर को बहुत बहुत खुशी के साथ थैंक यू कहा, और ऐसा लगा जैसे कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो. राहुल ये सब देख रहा था. उस राह ने गया, वो उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पैर नहीं है, तुम इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम इतने खुश हो, तुम्हें अपनी किस्मत पर गुस्सा नहीं आता? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब शुरू में बहुत दुख होता था, लेकिन फिर मैंने अस्पताल में उन बच्चों को देखा जो ना बोल सकते हैं ना देख सकते हैं. भगवान ने मुझे तो आंखें दी हैं, बोलने के लिए जुबान दी है, और मेहनत करने के लिए दो हाथ भी दिए हैं, तो मेरे पास बहुत कुछ है भगवान को धन्यवाद कहने के लिए, तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं. बच्चे की बात सीधे राहुल के दिल में उतर गई. उसे अपनी छोटी सी परेशानी पर इतना तमाशा करने पर खुद से शर्म आने लगी. उसके दिमाग में अचानक से एहसास हुआ कि मुझ में और इस बच्चे में कितना अंतर है. राहुल ने तुरंत अपने आप को संभाला और उस बच्चे से सारे अखबार खरीद लिए, अपनी गाड़ी ठीक कराई, और एक नई एनर्जी के साथ घर लौटा. और अब उसके पास अपनी समस्याओं के लिए रोने की बजाय अपनी खुशियों के लिए मुस्कुराने की एक बड़ी वजह थी. एक छोटे से बच्चे ने आज उसे बहुत कुछ सिखाया था. और ऐसा हमारे साथ भी होता है,
जब भी आपको अपनी जिंदगी अधूरी या दुखों से भरी लगे ना, तो एक बार अपने से नीचे या ज्यादा जरूरतमंद लोगों को देख लेना। आपको एहसास हो जाएगा कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है जो बहुतों के पास नहीं है, और जिसके लिए आपको ईश्वर पर, भगवान पर नाराज होने की बजाय उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए।

0: मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गाना अमृत फिल्म से आज के चिंतन के साथ जोड़कर सुनाया। चिंतन आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और उनके लिखे हुए अमर गीतों में से ये गीत एक है। और इस गाने की जो दो पहली लाइनें हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा सच और दर्द को सहने की ताकत बयां करती है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नजरिया भी है। जब तक हम सिर्फ अपने दुखों को देखते हैं, हमें अपनी जिंदगी सबसे भारी लगती है, लेकिन जैसे ही हम अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराते हुए लड़ रहे हैं। और ये गाना हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और हो सके तो किसी की मुश्किलों को कम करने का जरिया बनना चाहिए। यही मैसेज आज के चिंतन में था और यही मैसेज आज के इस गाने में था। आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं, आपको चिंतन भी पसंद आया है। और हमारे परमजीत का कहना है कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये गाना बहुत खूबसूरत है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए, आपको चिंतन अच्छा लगा। इसके अलावा ढेर मैसेज हैं, सलमा जी कैंट में सुन रही हैं, विनोद जी आपको भी अच्छा लगा चिंतन आज का, थैंक यू साथ देने के लिए। जैस्मीन थैंक यू आपके मैसेज के लिए। क्रोइडन से महेंद्र पटेल जी, हंसा जी, भारत से गिरीश जी कहते हैं न खुशी अच्छी न मलाल अच्छा, जिस हाल में ईश्वर रखे वो सबसे अच्छा, काश कि ये बात हम सब समझ जाए। थैंक यू शेखर जी, अर्जुन जी थैंक यू, राजेश जी आपने भी लिखा है कि आप शुरू से शो में जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि कभी कभी एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ गलत हो जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हे ईश्वर हमारे साथ ही क्यों। लेकिन हर असफलता बुरी स्थिति बदलाव का मौका देती है। और आपने लिखा है कि आपको याद है कि आपके बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जब तुम बुरा और उदास महसूस करो तो उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी गरीब हैं, जिनके पास तुम्हारे से कम है। होता है ऐसा अक्सर ही, काश कि हम सब ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें, तो शायद हमको ये दुख कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, और इसीलिए तो चिंतन है जो बार बार आपको अच्छी बातें याद दिलाता है, ताकि कुछ समय के लिए ही सही अच्छी बातें दिमाग से गुजरती है ना तो मन अच्छा हो जाता है और हमें फिर से याद आ जाता है कि हाँ ये अच्छा है, सीखने लायक है, आगे से हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू राजीव पटेल जी, भरत कंगाराम जी, अनिल सोनी बियाना से, भारती जी, फतेह पटेल जी, रंजन जी, जगदीश जी बुसी से, राजकुमार जी, रागिनी जी, रानी जी थैंक यू, मानु जी आप हमारे साथ हैं, प्रकाश सुधार, पूरन कपूर जी एंड आनंद तोमर जी, जय सियाराम, सभी का स्वागत है आपका। चिंतन पसंद किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब लौट चलते हैं गीतों की ओर और सुनवा देते हैं आपको एक बहुत ही मीठा सा गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 125.5 भारतीय रुपए, और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज इंग्लैंड की टीम और कैंगो की टीम आपस में मैच खेलने वाली हैं और आज बेल्जियम और सेनेगल का मैच भी होने वाला है। लेकिन याद दिला दें कि आप बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk।
3: ये है लाइका गोल्ड।

0: जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
3: वेलकम टू द जंगल।
1: फिल्म बिल्कुल फेक,
3: हमारी फिल्म आर्मी वाली
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
1: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
3: और स्टार कास्ट है
1: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
1: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में।
1: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757। Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
8: in Dubai।
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24-hour line।
10: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो, हैमर स्मिथ। हमारे राम।
14: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
13: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो।
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
1: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. iTag at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit,

0: मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना आज कई महीनों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया है और हमारी निर्मला जी आपको गीत अच्छा लगा है, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। वैसे मिलन फिल्म से लिया था ये गाना जो सुनील दत्त और नूतन की फिल्म थी और इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते थे और इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था और सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, जब भी बजते हैं आप सबको पसंद आते हैं। तो थैंक यू साथ देने के लिए, मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुँचते जा रहे हैं।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो ये मैसेज भेजा है परमजीत बासी जी आपने स्लाव से और आपने गुलजार की लिखी हुई दो लाइनें हमारे साथ शेयर की हैं। लिखा है इसमें कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। बिल्कुल सही बात है, इंसान के साथ भी यही होता है, इसलिए कहते हैं ना गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। और ये चिंतन के लिए एक अच्छा मैसेज है, ज़रूर कोशिश करूंगी कि इस पर कोई कहानी बुन सकूं और आपको सुना सकूं। थैंक यू अर्जुन जी, बहुत धन्यवाद। आपने ये क्या कहा है मुझे चेक करना पड़ेगा पहले, आपने जो मैसेज किसकी बर्थडे आप मना रहे हैं पहले चेक करती हूँ है भी कि नहीं, आज मुझे नहीं लगता कि इनकी बर्थडे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। थैंक यू मानू जी। और एक मैसेज आया था ज्योति पटेल आपका, आपने बताया है कि आज आपके नेफ्यू की 31st बर्थडे है और सारा परिवार उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देना जा रहा है। तो ज्योति पटेल जी की ओर से उनके नेफ्यू को जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ और अगला गाना उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। और उनके साथ साथ विजय गोनोवा जी, थैंक यू, स्वागत है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। किरण जी हैरो में हमारे साथ हैं और हमारे राजीव पटेल जी ने देखिए क्या बात मेरी मानी है, उनकी पत्नी जी ने उपमा बनाया है एक नहीं दो नहीं ढेर सारी वेजिटेबल्स डालकर और उन्होंने जी भर के उनकी तारीफ भी कर दी है। अभी से ही शुरू कर दी आपने मेरी बात माननी, आप सच्चे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल अच्छा किया, तारीफ करने में देर नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर पत्नी की, जितनी तारीफ करेंगे उतना ही अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, सिंपल है ना।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो बता दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है और इसका टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड टाबूस और इसे हो रेडियो वाली ने होस्ट किया है और आप हमेशा की तरह एक लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं अमेजोन पर, स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं सब जगह हमारा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit Kajal's Couture.co.uk.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.
10: હલો કે છો હું છું કેતી દવે અને આ શું થઈ ગયું અરે અરે પબ્લિક ડિમાન્ડ ફરીથી આવી રહી છું લંડન મારું નવું નાટક લઈને પત્ની પ્રીમિયર લીગ એટલે કે PPL યસ ફ્રોમ 3rd જુલાઈ ટિલ 12th ઓફ જુલાઈ વાઓ એન્ડ ધીસ ઇઝ બીંગ પ્રેઝન્ટેડ બાય પંકજ સોડા ગેલેક્સી શોઝ યાદ રાખજો
11: પત્ની પ્રીમિયર લીગ શોઝ એટ રાઇસલીપ અલ્બર્ટન ઇસ્ટ એન્ડ સાઉથ લંડન લોર હોમ લેસ્ટર ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન કોલ દીપા ઓન 0794756194 7
12: જદું ભી કોમેડી મૂવી ની ગલ હુંદી હૈ તાં એક મૂવી દા નામ હંમેશા આંદા હૈ ઓ મૂવી જિને સબનુ હસા હસા કે લોટપોટ કીતા
13: કી કહે રહે હો
12: ઓ મૂવી જિની સ્ટોરી ને બ્રેન રોટ કીતા
13: કી કહે રહે હો
14: કીપ ग्रेवाल बिन्नू टिनो सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
15: पर टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया
12: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर द स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर द फेस्टिवल है
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com T&C apply
17: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहो छे
18: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अन स्टार टूर्स तमने लई जाई રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
17: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર
18: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
17: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
18: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
17: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
18: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
19: એટ બ્રેસ્ટ કેન્સર નાઉ વી નો ચેકિંગ યોર બ્રેસ્ટ કેન ફીલ ડોન્ટિંગ બટ ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ TLC ટચ લુક ચેક ટચ યોર બ્રેસ્ટ્સ Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
20: कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन द लाइक अ रेडियो नेटवर्क

0: खूबसूरत गाना लता जी की आवाज़ में वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। इंद्रा जी ने वेम्बली से हमारे साथ गुड न्यूज़ शेयर की और आपने बताया है कि आपके नेफ्यू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री क्लियर कर ली है और सारा परिवार उनकी अचीवमेंट पर उन्हें बधाइयां दे रहा है और कह रहा है कि उनके सारे सपने पूरे हों। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली जिसमें शामिल है प्राउड पेरेंट्स धनसुख एंड बीना फ्रॉम विश्ववादिया एंड ढोकिया फैमिली, तो हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाइयां विनय। और इसके अलावा निर्मला ने मैसेज भेजा है, निर्मला जी लिखती हैं, ऋतु मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ लेकिन मेरे पति मेरी तारीफ ही नहीं करते। अब निर्मला जी मैं क्या करूँ, मैं नहीं उनको समझा सकती। मैंने जो राजीव जी का भी मैसेज पढ़ा था, या तो आप मेरे शो में से उनको वो सुनवा दीजिए, या राजीव जी से मिलवा दीजिए, या मेरा शो में शुरू में जब मैंने बात बोली थी एक बार सुनवा दीजिए, शायद कुछ परिवर्तन आ जाए। पर अब ये सब आपको ही करना पड़ेगा ना, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि जल्द ही वो आपके खाने की आपकी तारीफ करना शुरू कर दें। थैंक यू साथ देने के लिए।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £96.7 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
7: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
8: 25? Seriously?
7: Sounds like Ojo time.
8: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
7: Sorry about the wait, how can I help?
8: You can help me celebrate. I won!
9: Feel the fun! Play Ojo!
10: First deposit only, most wins are instant. 18 plus, gamble aware, T's and C's apply.
11: Just 3 days to go.
12: Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
15: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
14: Southall Travel.
15: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
14: Southall Travel can take you there.
16: Southall Travel, at all protected.
17: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
18: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
19: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
18: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
19: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
18: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
20: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
21: Lattuke halone nandala.
20: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
22: Location, location, location.
23: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
22: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
23: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
22: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
23: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
22: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
23: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
22: high appreciation
23: in Dubai.
24: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jya madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September na Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
25: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
26: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
25: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
27: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
28: Spring hits on Leica Radio Network.

0: सुभाष घई की इस फिल्म ने कमाल किया था। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। शुरुआत में तो ये फिल्म ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद है। पुनर्जन्म पर आधारित है इस फिल्म की कहानी, और ऋषि कपूर ने, सिमी गरेवाल ने क्या काम किया है, और साथ ही साथ कमाल का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस फिल्म में बेस्ट म्यूजिक के लिए उन्होंने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीता। और ये गाना हमारे मुकेश जसवंतरी जी ने भी पसंद किया है। चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। उल्लास साथ दे रही है हमारा जैज जी, आपका भी मैसेज मिला है। हाउ फनी कहती है निर्मला जी से कह दो कि अगर पति खाने की तारीफ नहीं करते तो अगली बार से उनके खाने में थोड़ा ज्यादा नमक मिर्च मिला देना, फिर अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। क्या आइडिया दिया है, ओ माय गॉड, घर में आप लड़ाई करवाओगी जैस हैं? थैंक यू शेखर जी, राजीव पटेल जी, भारती जी, निर्मला जी, जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीतों का सिलसिला इस आवर में भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें एक बार फिर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 125.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब आने वाला है शमशाद बेगम की आवाज में अगला गीत, क्योंकि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है शमशाद बेगम, जिन्होंने अपने जमाने में कई सारे सुपरहिट गीत गाए हैं, और ऐसा ही एक बड़ा ही खूबसूरत पॉपुलर गाना चुना है मैंने बजाने के लिए। अब से बस थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ।
2: ये है लाइक अ गोल्ड।

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: वेलकम टू द जंगल।
4: फिल्म बिल्कुल फेक।
3: हमारे फिल्म आर्मी वाली
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
7: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में।
9: Great news, Thadikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Rainers Lane.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
10: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Lattuke halo ne nandala.
10: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
3: Meetha khara, khara.
10: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
12: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
15: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
17: हिंदुस्तान का देना तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

क्या गाना है मेरे पिया गए, आहो बहुत ही पॉपुलर गाना है ये गाना। पतंगा फिल्म से लिया था, जिसमें रामचंद्र सी रामचंद्र जिनका म्यूजिक था उनकी आवाज भी थी और साथ में थी शमशाद बेगम जो हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। और उनके गाने आपको हर शो में एक तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। दिनेश पोपट जी आपका मैसेज आया है, थैंक यू साथ देने के लिए। एंड विभाकर जी गार्डनिंग भी कर रहे हैं, स्टेनमोर में है और गीतों को भी सुन रहे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। एंड ऑफकोर्स फरीदा जी ने कहा था कि शमशाद बेगम का गाना मेरे नाम करना, तो बिल्कुल आपके नाम जाता है। और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं 70+ या 65+ उन सभी के नाम पर जाता है।

0: दलेर मेहंदी की आवाज में 90s में उनका एल्बम आया था हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, और इसके सारे के सारे गाने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, और इसीलिए आज इस गाने को प्रोग्राम में सुनवाया। और अगर आप और भी 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि द लेजेंडरी हरिहरन यूके आ रहे हैं सोल इंडिया अपना शो लेकर एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन, और ये सब कुछ होने जा रहा है दिस सैटरडे 4 जुलाई को। टिकट्स अवेलेबल हैं एट southbankcentre.co.uk पर, और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। तो अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराई हैं तो जल्दी से टिकट्स बुक कराइए और इस मौके को नहीं गवाइए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold. Laika Gold.
4: Ye hai
3: Laika Gold.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: जी हाँ, संगम फिल्म से लिया था ये गाना जो 1964 में आई थी। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद दिलाती चलूं कि लाइक अ रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए ला रहे हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम। और ये शो होने जा रहा है बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई एट लंदन्स एवेंटिम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं, रावल बुच्चर ने राम का कैरेक्टर निभाया है, तरुण खन्ना महादेव बने हैं, और भी बहुत ही खूबसूरती से सारे प्ले को स्टेज पर निभाया जाएगा। अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं मिला है। और ज़रूर जाइए अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर, उन्हें भी दिखाइए श्री राम की ये कहानी, या कहूँ अद्भुत कहानी।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: और अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल साउथ हॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। उनके पास बहुत अच्छी साउथ दुबई के लिए डील्स हैं। आपको फ़ोन करना है उन्हें 0208-574-8410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: 18 plus, gamble aware.
9: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
10: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
9: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
10: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
9: Cashback Remortgages. Mortgages, the broker that gives you back.
11: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, He's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra-2026. Jai Shri Jagannath.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full week summer camps with code LAIKA10. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: अभिजीत भट्टाचार्य ने ये गाना गाया है यस बॉस फिल्म में शाहरुख खान के लिए, और उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए हैं शाहरुख खान की फिल्म्स में उनके लिए। और जब उनके शो में लाइव मैंने उन्हें सुना था तो मैं दंग रह गई थी, क्या पावर है उनकी आवाज़ में। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर गाया था, तो मुझे वो समय जब भी मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ तो वो सारा कुछ मुझे याद आ जाता है। एनीवेज, ये गाना आपने भी इंजॉय किया होगा, यस बॉस फिल्म से लिया था जिसमें शाहरुख खान थे और उनके साथ थी जूही चावला।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो लीजिए, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, बताइए आज क्या लाए हैं हमारे लिए, हमें बताने के लिए, हमारे लिसनर्स को बताने के लिए।
4: नीतू जी, गुड आफ्टरनून। पहले यस, आपने बोला ना यस बॉस, यस बॉस तो देख रहे हैं कि संडे कौन बॉस ऑफ क्रिकेट बनेगा।
0: ओह यस,
4: हाँ, तो कल हमारा मैच हुआ था, इट वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज 125/7 इन 20, इट वाज नेवर इनफ रन्स टू बी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इट वुड हैव बीन नॉट अ बिग स्कोर। इट वाज बिट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ क्राउड, अच्छा दिन था, you know, the whole thing was set, the stadium was set for a great game, but then Australia really bowled well, batted well, and fielded well, caught their catches. Australia 127 for 2 in 13 overs, so they won. Congratulations to Australia playing the final on Sunday. Now Rituji, on Thursday tomorrow we got the mighty England taking the mighty South Africa. The winner out of that, there is a big prize to go into the final on Sunday. So ye hamanga bahut bada hamanga hone wala, or it's going to be a electrified game, and especially being the home nation England, there will be a lot of support. And my thinking is that England should take this, and maybe could be Australia England final. So keep on listening, keep on watching somewhere along, and we'll give you all the updates from the ground for Leica Gold and Leica Radio. Keep your ears on it, and we'll bring you the cricket in your home and wherever you are listening from.
0: Thank you, Kamal.
4: Thank you, Rituji. That's it. Okay. Thank you. Have a great afternoon.
0: Thank you.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: The 1 pound will give you aaj 126 pound Indian rupees milenge 1 pound ke badle mein aapko 368 Pakistani rupees and 163 Bangladeshi takas.
6: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
6: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 96.7 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: लीजिए मुकेश जी की आवाज में ये गाना आपने सुना और अब अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार बाली आपका साथ देंगे। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी ढेर सारे गीतों के साथ। और हाँ, अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर दोबारा सुन सकते हैं। मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने सुबह से लेके अब तक मेरा साथ दिया, इतने खूबसूरत मैसेजेस भिजवाए। और थैंक यू मुकेश जसवंत्री जी कह रहे थे कि इज इट मी सिंगिंग, ओ ये आप गा रहे थे, मुझे लगा मुकेश जी गा रहे थे लेकिन आपका नाम भी मुकेश है। एनीवेज थैंक यू साथ देने के लिए। कल आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी, एक नया चिंतन होगा, कुछ नए गाने बजेंगे, कुछ नई बातें होंगी, तो साथ जरूर दीजिएगा। अगला गीत एंजॉय कीजिए। फिर से मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
1: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
2: 25? Seriously?
1: Sounds like Ojo time.
2: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
1: Sorry about the wait. How can I help?
2: You can help me celebrate. I won.
3: Feel the fun. Play Ojo.
4: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
5: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
6: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories, and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit gorgeouscouture.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
15: T's and C's apply.
16: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
17: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
19: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
18: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
20: अप नेक्स्ट बाली ब्रम्बट्स विद गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन लाइक अ गोल्ड मनोरंजन विद रवि शर्मा

0: Oh my God, what beautiful music, lilting music, none other than Shiv Hari. Aaj Hari Prasad Chaurasia. He was born on 1st of July 1938 in Allahabad in UP, Uttar Pradesh. And he is celebrating his 88th birthday. Inki speciality as a flautist, meaning to say flute kaho, ya bansuri kaho, ya murli kaho. Bansuri, matlab ke bamboo and sur. Ji haan, bans wo hoti hai bamboo aur sur, aur dono ka milap usko bansuri kehte hain. So Hari Prasad Chaurasia, who specializes in the playing of the beautiful instrument. Iske 6 holes jab hote hain, it covers 2.5 octaves. 7 holes hote hain, to 3 octaves. Aisi, matlab details mein agar main baat karun, to it's such a fascinating subject, the flute. Lekin we are celebrating the 88th birthday of Hari Prasad Chaurasia. Aur ye music aap sun rahe hain of the duo. Ab as early as 1967, Shiv Kumar Sharma, the great santoor player, and Hari Prasad Chaurasia, as I mentioned, the flautist, they recorded an album called Call of the Valley. You know, फिर उसमें गिटारिस्ट थे वगैरह और भी लोग थे लेकिन क्लासिकल म्यूजिक एल्बम अनयूजुअली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को मिलाया गया विद जैज एंड ब्लूज एंड ऑल यू नो एंड इट मेड इट पॉपुलर अमंग्स पीपल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज नाउ दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ शिव एंड हरी एंड न्यूमरस आउटिंग्स followed all over the years. And then obviously one was a santoor player and the other was a flautist. So both of them went their own ways to do their own shows internationally, globally. Lekin inhone haath jode saath mein 1980s mein to do 8 Hindi language films in total. सोलो प्रोजेक्ट से दूर होकर इन्होंने हाथ मिलाकर फिल्में की बॉलीवुड की और सब हिल गए बिकॉज 1981 में सिलसिला वो फिल्म का म्यूजिक जब आया फिर आपने ये गाना सुना हम जो अभी आपने जो गाना सुना फिल्म फासले का दैट्स राइट हम चुप हैं के दिल सुन रहे हैं 1985 And then Vijay in 1988. Mostly 3-4 saal ke baad wo karte rehte the. Par 88 ke baad 89 mein Chandni film aayi. Usme inhone itni khoobsurti se Shri Devi ko gawa diya. And she became a super duper hit. Itna bezura gaya lekin wo bezura pan inko suit karta tha. Inki andaaz ko. Aur inhone yahi socha tha. Ke humko nahi chahiye ke wo sur mein gaye. या ना तो कोई हमने ऑटो ट्यून यूज़ करना था क्योंकि इनको वही चाहिए था द नेचुरल वे शी सैंग इट तो चांदनी फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई म्यूजिकली उसके बाद आई लम्हे 1991 की ऑफ कोर्स द चोपराज डिड इट एंड परंपरा 1993 एंड देन साहिबान 1993 And jab film Dar aayi, jisme Shah Rukh Khan was the villain and Sunny Deol, both of them in this beautiful film called Dar. Aur uske gaane, aaj bhi hum sunte hain to khush ho jate hain. 90s ke gaane hum ek se zyada aapko suna nahi sakte, isliye ye tribute thoda chota ho jayega. So, we are remembering Shiv Hari as a duo and Hari Prasad Chaurasia ji ko happy birthday kehte hain aaj 88th happy birthday. Shiv Kumar Sharma passed away at the age of 84 on 10th of May 2022 where the partnership ended. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. सुनते रहिएगा
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus, gamble aware.
7: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit heartyhanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
13: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
12: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
13: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
12: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
13: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
12: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
13: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
14: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
15: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
16: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
17: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344 or 24-hour line.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
19: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
20: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
19: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
20: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
19: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
20: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
21: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
22: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अब यहीं पे ये सिलसिला खत्म होता है, बिकॉज 90s के गाने हम नहीं सुना सकते आपको, तो नेचुरली फिल्म परंपरा, साहिबान और फिल्म डर, इसके गाने हम नहीं सुना सकते, सो यहाँ पे ये सिलसिला पूरा होता है। लेकिन आगे जो एक ट्रिब्यूट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इट इज़ द ट्रिब्यूट ऑफ हेमन भोसले, हेमन गुप्ता, सॉरी भोसले तो आएगा थर्ड आवर में, बिकॉज इट इज सुदेश भोसले, सुदेश भोसले जी की बर्थडे है आज, यस, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गेट हिम ऑनलाइन, बट 66th बर्थडे टुडे। लेकिन हम हेमन गुप्ता की बात करते हैं। हेमन गुप्ता हैज बीन नोन एज ए फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर 1930 से 1967, समथिंग लाइक 37 ईयर्स एक्टिव थे। इनकी फिल्में जो थी आनंद मठ, फेरी FERRY, काबुलीवाला, ये सब फिल्मों में उन्होंने प्रोड्यूसर एज डायरेक्टर का काम किया इन्होंने। ना ही वॉज बॉर्न ऑन 21st March 1914 इन राजमहल विच इज़ इन झारखंड। अभी बड़ी खूबसूरत फैमिली, ही ग्रू अप इन अ वेरी लार्ज जॉइंट फैमिली, बोलते ना अंकल्स आंट सब साथ में, कजिन सब साथ में रहते थे। एंड फादर इनके, ही वर्क्ड इन अ स्टेट ट्रेजरी ऑफिस फॉर सेवरल ईयर्स एंड ही वाज पोस्टेड इन ढाका बांग्लादेश वेयर हेमन स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड। एंड देन आगे जाते हुए इन ही वाज वेरी गुड विद स्टडीज, तो हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएशन, कॉलेज स्टडीज इन ढाका वेर ही ग्रेजुएटेड विद एकेडमिक ऑनर्स अंडर हिज अंडर ग्रेड, ही मूव टू कोलकाता विच यूज टू बी कैलकाता इन वेस्ट बंगाल। यहाँ तक कहानी ठीक है। फिर उसके बाद ही जॉइन द नेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट टू ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सोचो, ये बंदा इतना एजुकेटेड था एंड ही जॉइन द यूथ विंग ऑफ द लोकल कांग्रेस पार्टी इन 1928 एंड ही वॉज ड्रॉन इन टू वॉट ब्रिटिश अथॉरिटीज कंसिडर्ड, यू कैन से सबवर्सिव एक्टिविटीज, यू नो, जैसे कि ही वॉज एलिजिडली कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसका मर्डर जो हुआ था, दैट वॉज मिस्टर जेम्स पेडी एंड रॉबर्ट डगलस, तो वहाँ पे इनको एकम्प्लिस बनाया गया। एंड देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी डक्का आसाम मेल ट्रेन रॉबरी केस, मतलब ये सब कांड करने के बाद उनको जेल में डाला गया, तो 6 साल तो जेल में गुजारे 1932 टू 1938। इट वाज लाइक बक्सार जेल एंड डियोली जेल, ये सब जेल्स में 6 साल। तो वहाँ पे रहकर ही गॉट इंटरेस्टेड इन टू फिल्म मेकिंग, वो सोच रहे थे कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है, सो एक कीन इंटरेस्ट था इन आर्ट एंड साइंस ऑफ फिल्म मेकिंग। एंड वाइल इन जेल ही रिज्यूम्ड हिज एकेडमिक स्टडीज, जेल से रिहा होते ही वर्कड इन क्लोज एसोसिएशन विद इंडियाज सेलिब्रेटेड लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ। एंड आगे जाते हुए एजुकेशन भी इन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन फिल्मों में जो इंटरेस्ट था इसलिए एज एन असिस्टेंट कहीं पे ज्वाइन किया। आई कट इट शॉर्ट, ऐसा करते करते करते करते करते करते आगे बढ़े एंड ही गॉट इन टू फिल्म डम। उनके गाने नेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक, मैं दो गाने उनके भी सुनाऊंगा। वी आर रिमेम्बरिंग हेमन गुप्ता जी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency is equivalent to 1 sterling pound. US dollars 1.3237, Indian rupees 125.93, Pakistani rupees 368.18, Afghanistani 84.56 and Kenyan shillings 171.16.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: hold rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.88 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7am Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
5: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
6: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
7: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
5: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
6: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
2: Feel the fun, Play Ojo.
7: 18 plus, gamble aware.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Just 3 days to go.
11: Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
10: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
12: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
13: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
12: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
13: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
12: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
14: Jadon vi comedy movie di gal hundi hai, ta ek movie da naam hamesha aunda hai. Oh movie jinne sabnu hasa hasa ke lot pot kita.
15: Ki keh rahe ho?
14: Oh movie jidi story ne brain rot kita.
15: Ki keh rahe ho?
16: Gippy Grewal, Binnu Tinno, Sargun Mehta. Phir to leke aa rahe ne Punjabi cinema di sab तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा फोन जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
17: और ढिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया।
14: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
18: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन।
19: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
20: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
21: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
20: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
21: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
20: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
21: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
20: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
21: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
0: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटेटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
0: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटेटो चिप्स नाउ।
22: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
23: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: रोशन का संगीत और साहिल लुधियानवी की लिरिक्स, लेकिन हम याद कर रहे हैं हेमन गुप्ता को। हेमन गुप्ता ने फिल्म बाबर डायरेक्ट की थी। जी हाँ, हेमन गुप्ता जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करके यूथ मूवमेंट में हिस्सा लिया, जेल में चले गए 6 साल, वहाँ पे इन्होंने फिल्म्स के बारे में स्टडी किया और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस करके इन्होंने 3 फिल्में खूबसूरत जो की थी, उनमें से ये एक है। दूसरी काबुलीवाला।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile.

0: अब अगर मैं बात करूं अबरार अलवी की, I can keep on talking about him forever because he was so talented, so talented. इस हद तक के जैसे एक फिल्म थी साहेब बीवी और गुलाम, आपने जो अभी गाना सुना भवना बड़ा नादान है, उसमें बात ऐसी थी कि वो फिल्म का डायरेक्शन, सब लोग कहते हैं कि उनका नाम स्क्रीन पे आया था लेकिन डायरेक्टर तो गुरुदत्त थे. दैट इज़ नॉट ट्रू. आई टेल यू द एग्जैक्ट स्टोरी हाउ इट हैपन्ड, कि कैसे इनको डायरेक्शन मिला था. अभी गुरुदत्त ने इनिशियली क्या किया था, ही हैड थॉट ऑफ डायरेक्टिंग द फिल्म साहेब बीवी और गुलाम, ओके, 1962 की जो फिल्म थी. फिर बाद में ही रीच्ड आउट टू सत्यन बोस. सत्यन बोस वॉज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म बंदी, चलती का नाम गाड़ी, ऐसी सक्सेसफुल फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की थी. सो ही वेंट आउट टू सत्यन बोस. तो सत्यन बोस ने कहा कि यस, आई कैन डायरेक्ट योर फिल्म साहेब बीबी और गुलाम, लेकिन इट विल बी विद माय ओन टीम, मेरी अपनी टीम. अभी गुरुदत्त जी बोले, मेरी टीम तो 10 साल से मेरे साथ काम कर रही है, उनको मैं क्या जवाब दूंगा. तो उन्होंने कहा कि सॉरी बट इट हैज़ टू बी माय टीम. थोड़ा कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना. तो फिर देन ही वेंट टू नितिन बोस. नितिन बोस जिन्होंने फिल्में की थी जैसे कि दीदार, कठपुतली, गंगा जमुना, यस. तो उन्होंने कहा कि ओके, मुझे नरेशन चाहिए स्टोरी की. तो नरेशन के लिए पूरी स्क्रिप्ट तो लिखी थी हमारे अबरार अलवी जी ने. बाय द वे, वी आर रिमेम्बरिंग अबरार अलवी फॉर हिज 99th बर्थ एनिवर्सरी. सो उन्होंने अबरार अलवी को कहा कि नरेशन के लिए आप आ जाओ. तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड इन सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस में मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, तो मैं आपको वही भेज देता हूँ. बोले नहीं, योर प्रेजेंस इज़ रिक्वायर्ड. तो फिर अबरार अलवी वेंट फॉर दैट पर्टिकुलर नरेशन. अभी गुरुदत्त जी के माइंड में क्या था, उन्होंने सोचा था कि ये नितिन बोस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आई थिंक आफ्टर अबाउट 1 week ही सडनली अप्रोच्ड अबरार अलवी एंड ही हैड बीन ड्रिंकिंग. तो उसको कहा कि अबरार, मैं चाहता हूं कि तू ये फिल्म डायरेक्ट कर. तो अबरार अलवी बोले कि नहीं, मैं ये मैं नहीं कर सकूंगा, बिकॉज दिस इज बिल्ट ऑन बंगाली कल्चर एंड द न्यूएंसेस इन्वॉल्वड ऑफ बंगाली कल्चर एंड ऑल दैट. सो आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल दैट, सो मैं नहीं कर पाऊंगा ये. तो उन्होंने मना कर दिया. फिर वापस 2 week के बाद गुरुदत्त जी ने वापस कहा. सो अबरार अलवी ने वापस मना कर दिया, बिकॉज ही सेड कि ये बंदा दारू पी के, मतलब शराब पीकर मुझसे बोल रहे हैं, तो मतलब ही मस्ट बी नॉट इन हिज सेंसेस. तो उन्होंने वापस मना कर दिया. एक बार उनको समन किया गया उनके ऑफिस में, अबरार अलवी को समन किया गया गुरुदत्त की ऑफिस में. सो ऑफिस में वो गए तो उन्होंने देखा कि He was smelling his breath and he realized that he's not been drinking and he's quite sober. और उन्होंने कहा कि देख, यू नो, रेड कार्पेट वेलकम स्टाफ को बोला डालो, इनको बुलाओ. ये सब करके इन्होंने उनको बहुत मनाया और कहा कि देखो, वी विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट, मैं साथ खड़ा हूँ. अभी हुआ क्या कि बाद में अबरार अलवी मान गए. जब मान गए तो उन्होंने इमीडिएटली उनको ग्रैंड होटल इन कोलकाता 3 महीने के लिए उनको बुक कर दिया विद बिमल मित्रा, हु वाज द नॉवेलिस्ट. अभी नॉवेलिस्ट वाज एक्चुअली टॉकिंग इन बंगाली, ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी. सो अबरार अलवी को बंगाली नहीं आती थी. उन्होंने मेहनत करके बंगाली लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा सीखा एंड दूसरा एक ट्रांसलेटर रखा था वहाँ पे, उसने ट्रांसलेट की थी फिल्म. इवेंचुअली द सीन इज दैट बेस्ट फिल्म का खिताब मिला गुरुदत्त को एंड बेस्ट डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, ये सब अवार्ड्स जब अनाउंस किए गए, अबरार अलवी का नाम आया एंड पीपल वर थिंकिंग कि नहीं, डायरेक्शन तो गुरुदत्त की ही होगी, लेकिन नहीं, अबरार अलवी डिड डायरेक्ट एंड ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ विद सो मेनी फिल्म्स दैट ही हैज डायरेक्टेड एंड दे वर ऑल सुपर डुपर हिट्स. अबरार अलवी, आई रियली एडमायर हिम सो मच. मैं तो हर बार सलाम करता हूँ उस आदमी को जो इतना टैलेंटेड था, नॉट ओनली राइटिंग द स्टोरीज पर डायलॉग राइटिंग, पूरी फिल्मों के डायलॉग्स जो हम लोग तालियां मारते हैं सिनेमा में बैठ के, और स्क्रीन प्ले, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी. सो आई एम रिमेम्बरिंग अबरार अलवी फॉर द 99th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज. 1 जुलाई 1927 में जन्मे. And he passed away in Mumbai on 18th November 2009 at the age of 82. गुरुदत्त के साथ जो फिल्में इन्होंने की थी, अभी जो फिल्म आपने देखी प्यासा, वो प्यासा फिल्म हैज़ बीन नेम्ड इन आई थिंक वन ऑफ द, इट वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द टॉप 100 फिल्म्स. प्यासा इंक्लूडेड इन द ऑल टाइम 100 मूवीज बाय टाइम मैगजीन. And that was also story Pyasa ki Abrar Alvi. We are remembering Abrar Alvi today. Gaane sunenge aur kuch aur bhi baatein jo mujhe yaad aayegi main aapko bolta rahunga. He was active from 1954 to 1995 for 41 years, you know. And wo film Saheb Bibi aur Ghulam, usme only the songs of the film were directed by Gurudat. But the film was directed by Abrar Alvi. I hope you are clear on it at last. Main hoon Bali Brahmat, on Like a Gold with Gold Afternoons. Jude rahiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For your £1 in British sterling, you can get up to 125.5. I repeat, 125.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: FIFA is happening everywhere. It's FIFA fever, football fever on knockout stage, round of 32. Yesterday, Côte d'Ivoire against Norway, and Norway won the match. France versus Sweden. France scored 3-0. So Sweden is out. Mexico versus Ecuador. Mexico scored 2 and they won the match. And tonight, 5 p.m., England versus Dr. Congo, main bolta hun. Dr. Im, I meaning to say, the, of course, Democratic Republic of Congo. And 9 p.m., Belgium versus Senegal. These are the two matches today. 23 teams are out of the World Cup now. Haiti, South Africa, Uzbekistan, South Korea, Iran, Iraq, Uruguay, Saudi Arabia, manager se ka, New Zealand, Scotland, Turkey, Tunisia, Jordan, Panama, Germany. Then we got Curacao and Netherlands, Japan, Cote d'Ivoire, Sweden, Ecuador, Czechia and Qatar. They are all out. And let's see, those who are in, it's going to be a surprise winner. If not France, is going to be a surprise winner this year. And don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: Great news, Thadekalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadekalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Thadekalal Rainers Lane.
3: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
1: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
1: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
1: Visit Kajal's Couture.
3: Just 3 days to go.
5: Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं।
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
15: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: अभी आपने जो गाना सुना, that was from कागज के फूल. कागज के फूल 1959 की फिल्म थी. जो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कागज के फूल में इनका रोल क्या था. अबरार अलवी का, ही हैड रिटन द डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म. द फिल्म बॉम्ब्ड, बट देन देयर यू गो. नाउडेज इफ यू वॉच दोज फिल्म्स, यू विल से पता नहीं क्यों ये फिल्म फ्लॉप हुई थी, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है. बिकॉज सम फिल्म्स वर वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड पीपल रियलाइज लेटर ऑन दैट वॉज गुरुदत्त फॉर यू. अभी एज एन एक्टर, अबरार अलवी एक्टेड इन लैला मजनू 1976 की, दैट वॉज अ गेस्ट अपियरेंस. एंड 1958 में एक फिल्म थी 12 o'clock, उसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे. अब एज अ डायरेक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी कहा साहेब बीवी और गुलाम वॉज डायरेक्टेड बाई अबरार अलवी. एंड गुलाम सॉरी दरार फिल्म टीवी सीरियल वो भी इन्होंने डायरेक्ट की थी. दूसरी फिल्में जितनी भी इन्होंने की थी, जैसे कि आर पार, इसमें इन्होंने डायलॉग्स लिखे थे. आई वुड से फिल्म गुड्डू 1995 की, उसमें डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले. फिर कसम

0: सुहाग की, उसमें डायलॉग्स लिखे थे। फिर बीवी ओ बीवी, दैट वाज अनदर गुड फिल्म, इट वाज अ फन फिल्म, कॉमेडी फिल्म थी, ही रोट द डायलॉग्स। एंड देन हमारे तुम्हारे, दैट वाज डायलॉग्स एंड ही डिड द स्क्रीन प्ले। एंड सबसे बड़ा रुपया, ही डिड द डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले। बैराग फिल्म, ही रोट द डायलॉग्स ऑफ दैट फिल्म, बैराग, आपको मालूम, दिलीप कुमार साहब। एंड देन लैला मजनू 1976 की, वहाँ पे इन्होंने डायलॉग्स लिखे थे। मनोरंजन, वाओ, इट वाज रिटन बाय हिम, मनोरंजन फिल्म जिसमें शम्मी कपूर जी थे। एंड इट वाज अ शम्मी कपूर फिल्म रियली, ऑल एंड आउट, एंड संजीव कुमार वाज इन दैट फिल्म। एंड देर वाज आल्सो जीनत अमान, व्हाट अ फिल्म, मनोरंजन, वो फिल्म वाज रिटन बाय अबरार अलवी। कितने टैलेंटेड इंसान थे। साथी फिल्म 1968 की, ही रोट द डायलॉग्स ऑफ दैट फिल्म, संघर्ष फिल्म के डायलॉग्स। एंड देन छोटी सी मुलाकात, जॉय मुखर्जी की, ही रोट द डायलॉग्स ऑफ दैट फिल्म। फिल्म सूरज, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सूरज के अबरार अलवी ने। प्रोफेसर फिल्म, वो डायलॉग्स लिखे और ऑल्सो ही डिड द स्क्रीन प्ले। चौदहवीं का चांद, ही डिड द स्क्रीन प्ले ऑफ दैट फिल्म। बहारें फिर भी आएंगी, जो फिल्म गुरुदत्त की थी, एंड ही पास्ड अवे, ही डाइड बिफोर द फिल्म वॉज मेड। दैट वॉज आई थिंक ही डिड द, आई हैव अ फीलिंग ही रोट द स्टोरी ऑफ दैट फिल्म, येस। एंड देन मिस्टर एंड मिसिज 55, वहाँ पे डायलॉग्स लिखे थे। सो अ मैन वॉज सो टैलेंटेड इज बींग रिमेंबर्ड टूडे ऑन हिज 99th बर्थ एनिवर्सरी, यस, अबरार अलवी।
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
0: And jaise maine earlier on, I had told you about Hariharan, who is arriving, and the tickets are going so fast, believe you me. And abhi maine Ashish Mathur ji se baat ki, and he's saying it's going crazy. Tickets are really going so fast. And the legendary Hariharan returns to the UK for Soul India at Royal Festival Hall on 4th of July. This is just Saturday. And tickets at southbankcentre.co.uk, exclusive radio partner Leica Radio Network. And Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com. Leica.
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo, only Leica Gold.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra Podcast Update.
0: The podcast episode number 22. The title is Pride Month, Traditions and Taboos, hosted by Radio Ali, in which he says, we explore the realities of being part of the LGBTQ plus community in a world that is still learning to understand. You want to know more? Episode number 22, Leica Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here.
3: Ye hai.
4: Leica Gold.
3: Leica Gold.
5: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: वेलकम टू द जंगल
7: फिल्म बिल्कुल फेक
6: हमारी फिल्म आर्मी वाली
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
7: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ
10: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
11: मैं किस लिए फिल्म में
12: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसलीप अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोन होम लेस्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime location
13: High appreciation
14: In Dubai
15: Experience the ultimate escape 25 unforgettable days across Australia breathtaking New Zealand and paradise in Fiji Two departures November and February it's the holiday of a lifetime First 10 bookings get 300 off Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111
16: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
17: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
16: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
18: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
19: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket so it could be you and it could be you you and then the same you again you one ticket two chances to win new Lotto it could be you and it could be you See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
3: Tasty track of the hour. Brought to you by Coca Noodles.

0: सबसे बड़ा रुपया, ये फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले किए थे अबरार अलवी ने। नेक्स्ट गाना है फिल्म प्रोफेसर।
1: नॉन स्टॉप क्लासिक्स लाइक अ गोल्ड।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3, 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra-2026. Jai Shri Jagannath.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
8: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
9: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट TWPays.com/Laika या कॉल कीजिए 0203129-9840. TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत.
10: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots. Learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
13: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
14: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल journey.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
14: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: शंकर जयकिशन ने इसको ढूंढा था, इकबाल सिंह, एक फूल चार कांटे, एंड शैलेंद्र जी ने ये गाना लिखा। होप यू एंजॉय इट, 1960 का हॉट गाना। नेक्स्ट वन इज खेल खेल में, 1975।
1: It's summer on the Leica Radio Network.
0: And Sandy Shah is here. And he's going to continue with the drive time. And Raj Patan on Leica Radio Midlands.

0: And I wish Anant K. Patel, who's having wonderful rehearsals in Watford with Rajesh Iyer. He's the Alankaran Award winner 2025. I did a show with him in Mumbai in October, November. Yes, with Kumar Sanu's son, Jan Kumar Sanu. Best of luck tonight.
1: This is Like a Gold across Greater London.
0: ये गाना है दिल ने फिर याद किया. हमने भी आपको बहुत याद किया, आपने मुझे याद किया, कल वापस याद करना. मैं आ जाऊंगा यही हॉट सीट पे. बाली ब्रह्मट का नमस्कार. सोनिक ओमी का संगीत है और जी एल रावल की लिरिक्स है. कलियों ने घूंघट खोला.

0: लाइव विद सैंडी शाह।
1: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
0: ऑन गोल्ड ड्राइव।
2: सो थैंक यू टू एवरीवन हु इज टेकन पार्ट सो फार। दिस इज योर लास्ट चांस एंड डोंट फॉरगेट आफ्टर दैट वी हैव आल्सो गॉट अ लवली सॉन्ग, अ रेयर सॉन्ग कमिंग अप, एंड देन वी आर गोना आल्सो गेट द वुमेन्स क्रिकेट अपडेट्स विद आवर वेरी डियर फ्रेंड एज वेल। सो दैट्स कमिंग अप शॉर्टली। सो दिस इज योर लास्ट चांस, हियर आर द टू स्टेटमेंट्स अगेन, टेल मी व्हिच वन डू यू थिंक आई एम एक्चुअली लाइंग अबाउट। So the first one is, a bolt of lightning can contain up to 1 billion volts of electricity. B, a guy called Yuri Gagarin was the first human to do the longest headstand, lasting 2 days and 10 minutes. Which one am I lying about?
0: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. Gold Drive with Sandy Shah.

0: Tony.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
0: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Yeah, ya wo.
3: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ सुन नई रोशनी. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दैट हैव वोटेड ऑलरेडी. दिस इज योर लास्ट चांस एंड देन वी विल आस्क अश्विनी एज़ वेल हु शी इज़ गोइंग टू वोट फॉर एंड आई विल टेल यू व्हिच सॉन्ग आई विल गो फॉर. सो द टू सॉन्ग्स यू आर वोटिंग फॉर शमशाद बेगम टुडे आर लागी मोरे मन की फ्रॉम द फिल्म शबाब या द ड्यूएट विद तलत महमूद फ्रॉम द फिल्म बाबुल मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का. व्हिच वन गेट्स योर वोट? दिस इज योर लास्ट चांस.
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323. Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: And they're very pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: Like a gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
7: This Saturday, Lotto is making a guaranteed 10 millionaires. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millionaires guaranteed to be made this Saturday. New Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules apply. 18 plus.
8: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. Watford Colosseum on Saturday, 8 August is now

0: houses and villas
1: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी of products including fresh vegetables and fruits with better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
2: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
3: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Goal Drive with Sandy Shah. Oh
5: yeah. आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
6: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: में जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक आप और हम हमेशा रहते हैं साथ, एंड साथ साथ 7 बजे भी शो शुरू हो जाता है। ओके, साथ साथ साथ एवरीथिंग साथ। कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। जी जी जी, हम यानी कि इंग्लैंड जीता है ये गेम आज का, तो बहुत सारी बधाइयाँ। और जैसे सैंडी कह रहे थे कि अगर तुम्हारा शो शुरू होता है तब तक मैच खत्म होती तो बहुत सारे लिसनर्स वापस आ जाएंगे। मेरा शो है, कैसे वापस नहीं आएंगे, आ जाएंगे, पहुंच गए हैं सब के सब, और सब काफ़ी आनंदित और प्रफुल्लित होंगे। व्हाट आई मीन इज लाइक एवरीबडी इज हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना, होंगे ही। एक तो मौसम का तकाजा उफ गर्मी तो है, लेकिन अब इंग्लैंड जब जीत चुका है तो उसकी गर्मी अलग लेवल की है भाई। अच्छा, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स आ रहे हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। वो हमारे जो साइलेंट लिसनर्स हैं ना, जिनको मुझे ऐसे ना एक हल्का सा नज देना पड़ता है ना, सुनो यार आपका मैसेज ही नहीं आया, तो बिल्कुल मैसेज करते चलिए हमारे साइलेंट लिसनर्स भी। एंड हमेशा की तरह एक सवाल जो आता है आप सबके लिए, तो बिल्कुल जी शुभ संध्या आप सभी को। एंड सवाल क्या है आज का? अगर आपके ऊपर कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है ना, अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई तो उसका क्या नाम होगा? मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम होगा प्रोसेस, यानी प्रक्रिया, यानी कि जैसे जैसे जीवन चलता रहा उस पूरे प्रोसेस को, जिस तरीके से मैंने इन्जॉय किया, रोना गाना किया, अप्स एंड डाउन, सारी चीज़ें जो फेस की, दैट वॉज अ प्रोसेस। सो मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम होगा प्रोसेस। आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या होगा? अरे लो लो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है, है ना? आपको ऐसे कभी तो ख्याल होगा कि अगर मेरे ऊपर कोई अगर किताब लिखी जाए तो उस किताब का नाम क्या होगा, वो बताने का मौका है आज, बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees and 50 paise. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
2: लाइका गोल्ड

0: Football Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच में फुल टाइम हो चुका है, जिसे जीता है मेक्सिको ने। इंग्लैंड और कॉन्गो डीआर के बीच मैच हुआ है, भाई हमने इंग्लैंड वालों ने जीता है। एंड बेल्जियम और सेनेगल के बीच गेम शुरू होने वाला है रात 9 बजे। डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15-मिनट फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: भी ला लेंगे घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 25 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो हर रोज़ ही हम किसी न किसी लाइफ थियरी पे बात करते हैं। आज बात करते हैं द टर्टल थियरी। ओके, तो टर्टल के बारे में हम सभी जानते हैं कि ओशंस में जनरली पाए जाते हैं टर्टल, और टर्टल जो है वो अपने पेस से, अपनी स्पीड से पूरी ओशन में आगे बढ़ते जाते हैं, तैरते जाते हैं। चाहे तूफान आए, चाहे पानी स्थिर रहे, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे पानी में सैलाब आते रहें, मछलियों के झुंड आए, वेल्स आए, जो भी हैं, लेकिन ये अपनी पेस से चलते रहते हैं। और आखिरकार जो ओशन का शोर होता है, जो किनारा होता है, वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। शॉर्ट थ्योरी बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी भी उस टर्टल की तरह होनी चाहिए। हमारी अपनी पेस से हम चलें, कोई कंपैरिजन ना करें। भी कंपटीशन रखनी है ना, तो अपने आप से रखनी चाहिए इंसान ने। ना जाने क्यों दूसरों से लोग कम्पीट करने लगते हैं। पहले हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं, ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड साथ में आपकी परिस्थिति, आपका चुनाव एंड साथ में आपकी पूरी जर्नी, ये आपकी अपनी होती है। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप कैसे और किस पेस से उस रास्ते पे चलते हैं, ये तो चॉइस आपका है ना। तो बस अपनी पेस से चलिए, आप भी किनारे तक पहुंच ही जाएंगे। बहुत सुंदर प्रोसेस है जीवन का, उसे ऐसे ही हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ना करिए कॉम्प्लिकेटेड। टर्टल थ्योरी रियायत रखिए कि कितना भी कुछ भी, कितने भी मछलियाँ, वेल्स, जितने भी अलग अलग पानी में जो भी पाए जाते हैं, वो सारे के सारे अपनी पेस से जाते हैं, लेकिन टर्टल जाता है अपनी पेस से। क्या आप भी अपनी पेस से चलते हैं, बताइए ज़रूर। कैसी लगी आज की टर्टल थ्योरी?
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
3: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
4: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
2: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
3: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: 18 plus, gamble aware.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823।
11: वेलकम टू द जंगल।
9: फिल्म बिल्कुल फेक,
11: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
12: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
9: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
11: और स्टार कास्ट है
9: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
11: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
9: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
11: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
13: मैं किस लिए फिल्म में?
9: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
11: Lattuke halo ne nandala.
9: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on

0: radio.com विजिट करें। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामी नारायण।
1: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply। sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
3: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 41 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है आप सभी का पसंदीदा म्यूजिकल फैमिली का पसंदीदा लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अच्छा जी, आज है 1st of July, तो हैप्पी न्यू मंथ टू ऑल ऑफ यू, है ना। नया महीना, नया जोश, कुछ नए से आप और कुछ नए से हम, और इस नएपन के साथ में हमने आगाज कर लिया इस शो का पहले आवर के नियरली एंड तक हम चलेंगे बस कुछ ही देर में। बैक टू बैक गीत आप लोगों को सुनाए, काफ़ी वेरिएशन आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए ताकि आप लोग शो को इंजॉय कर सको। आज मैंने आप सबसे पूछा है सवाल कि आप लोगों के ऊपर अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए तो आप लोग उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम रखेंगे। मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम होगा प्रोसेस, ओके। एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिख कर भेजा है कि भाई हमारी ऑटोबायोग्राफी, किसी ने कहा मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम होगा पेशेंस, किसी ने कहा ज़िंदगी की जंग, किसी ने कहा आई एम रेडी, किसी ने कहा प्यार, किसी ने कहा ये ज़िंदगी है, ओ माई गॉड आई एम एक्चुअली लविंग ऑल दोज नेम्स जो आप लोगों ने लिख के भेजे हैं। देखिए ना, हम सभी को लगता है कि हमारी ज़िंदगी पे, हमारी जीवनी पे कुछ ना कुछ तो लिखा जाए, तो क्यों ना आप भी लिखना शुरू कर दो। यू नो, जब अपनी डायरी या जर्नल में कुछ लिखते चलिए और वो जो लिख के रखा है, हो सकता है कि आगे चल के आपको ही लगे कि अरे यार ये तो, इसकी तो किताब बन सकती है, है ना। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग पोएम्स लिखते होंगे, शायरी लिखते होंगे और उसका एक कलेक्शन बनाया होगा। अगर आप लोगों ने अपनी पोएम्स और शायरी की जो किताबें बनी, अगर प्रिंट विंट करवाई हैं, किताबें हैं आपकी, मुझे ज़रूर बताइए, मैसेज करते चलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिव लोगों से बात करना, क्योंकि क्रिएटिविटी हम सभी में होती है, पैशन हम सभी में होता है और हम सभी उसे अलग अलग स्वरूप में फॉलो करते रहते हैं। कोई DIY काम करते हैं, कोई कुकिंग में, कोई गार्डनिंग में, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अच्छी अच्छी कला होती है। मुझे अच्छा लगेगा सुनना आप सबसे कि आप लोग क्या क्या पैशन फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, आई डू राइट हिंदी पोएम्स, मुझे अगर आप सबकी तरफ से वोट्स आते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू नो क्या आप लोग मेरी लिखी हुई हिंदी कविता यानी हिंदी पोएम्स सुनना पसंद करेंगे। तो वीक में से एक डे में एक छोटा सा एक टाइम हम फिक्स कर सकते हैं अबाउट दिस पोएम। आप क्या सोचते हैं, अश्विनी की लिखी पोएम्स कैसी होगी, सुनाया जाए, बताइए जरूर।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayana ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Like Radio.
6: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka labh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: London, good news! Aapka favorite iTag ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. For iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better on the Leica Radio Network.
12: Ye hai Leica Gold.
11: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 126.36 Indian rupee, 369.39 Pakistani rupee, 446.19 Sri Lankan rupee, 163.63 Bangladeshi taka, 83.81 Afghan Afghani, 171.68, that is Kenyan shilling, and 1.32 US dollars.
13: Leica Radio.
11: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
13: Leica Gold.
11: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.44 per gram.
11: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: forgotten memories refreshed. Leica Gold.
1: With competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: For £1 British sterling, you can get up to 125 Indian rupees and 75 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini on Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Greater Manchester. इस आवर का आगाज हमने किया था बड़े ही खूबसूरत गीतों के साथ में. साजन, which was released in 1991, उस फिल्म से तुमसे मिलने की तमन्ना. उसके बाद में कामचोर फिल्म के दो तीन गीत मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में तुझ संग प्रीत. ओके, दिस आवर डेफिनेटली पहला आवर तो आप लोगों ने पसंद किया है, इस आवर में भी आप लोग बेहद खुश होने वाले हैं. नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, दैट इज़ लता मंगेशकर की आवाज़ में. सुनिए कौन सा है ये गीत.
3: ये है लाइका गोल्ड.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 31 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. ओके जी, तो जब आप किसी को कोई वादा करते हैं तो वो वादा निभाना चाहिए. ओके, छोटी सी पर्सनल स्टोरी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस इन माई प्रीवियस शोज कि यहाँ पे मैं जब ड्राइविंग टेस्ट दे रही थी तो आई फेल्ड फॉर 10 टाइम्स एंड 11th अटेम्प्ट में मैं पास हुई. ओके, द गुड पार्ट विथ मी इज आई डोंट गिव अप. द बैड पार्ट विथ मी इज मैं हमेशा बहुत मतलब कहते हैं ना, जैसे वो बादल गरजता है और बरसता है, वैसे ही मैं दहाड़े मार मार के रो रही थी हर टाइम पे. बट माई बेस्ट फ्रेंड शी प्रोमिस्ड मी कि अगर तू तेरी ड्राइविंग टेस्ट पास होती है. आई ऑलवेज वॉन्टेड रेड शूज़. अच्छा, इट्स नॉट दैट कि मैं रेड शूज़ अपने लिए नहीं ले सकती, बट देन शी सेड कि नहीं नहीं, वो रेड शूज़ तू कभी लेना मत, मैं तुझे लेके देने वाली. एंड वेन आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट फाइनली 3 years ago. So last year when I went to USA, she lives in USA and she said, मैंने तुझे promise किया था कि मैं तुझे red shoes लेके देने वाली हूँ, तो मैं वो shoes देने वाली हूँ. I'm like, come on, यार रात गई बात की. And she's like, no, no, that was a promise which I made. And actually shop पे, you know, हम Asian लोग कैसे होते हैं, हम लोग पैसे भरने के लिए अपना कार्ड जो है सामने करते हैं बिलिंग के टाइम पे और लड़ते झगड़ते हैं. एंड वहाँ पे जो अमेरिकन लड़की खड़ी थी वो कहती है कि क्या चल क्या रहा है. एंड देन आई टोल्ड हर द स्टोरी कि ऐसे से. एंड शी सेड कि यार मैं तो मतलब शूज़ के साथ में सॉक्स और शू इन ना जाने और कितनी चीज़ें अपनी फ्रेंड से ले लेती गिफ्ट में. एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. सो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में कि आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया है, ठीक है ना, देखिए हर किसी के पास में अपनी अपनी चीज़ें लेने के लिए पैसा होता है, अपने अपने अनुभव करने के लिए उनका टाइम होता है, लेकिन जब आप कुछ किसी से वादा करते हैं तो वो वादा निभाना चाहिए. वेल, दोज रेड शूज़ आर वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई रोट अ स्टोरी एंड वो ब्लॉग भी मैंने लिखा था एंड दैट वॉज अप्रिशिएटेड अ लॉट बाई पीपल. सो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ही इतनी कहानियाँ होती हैं यार कि हम दूसरों की कहानियाँ पढ़ के तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ समझ में आता है, लेकिन ऐसा कुछ वादा क्या आपने कभी किसी से किया था और उसे निभाया या नहीं, याद कीजिए और बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए. ओके, इमोशन ऑफ द डे में बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक आप सबके लिए लेके आई हूँ पाकीज़ा फिल्म से. वॉल्यूम आप रखना चाहते रखिए, बिकॉज इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं ना, ओ एम जी, बस उफ वाला गाना.
0: ये है लाइका

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica
4: जी, आप सभी को ले चलते हैं हमारे जो क्रिकेट करस्पोंडेंट है कमल प्रभाकर जी के पास। कमल जी, कैसे हैं आप? कुछ कह रहे थे आपकी मौसम बेईमान है बड़ा आज।
5: हाँ अश्विनी जी, ये जो आज का क्या है, यू नो द नाइस ब्रीज है, कूल है और ये तैयारी कर रहे हैं कल की गेम के लिए। पर मगर कल हमारे लिए गेम अच्छा गेम हुआ, यू नो व्हेन वी हैड वेस्ट इंडीज टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज कलैप्स एंड डिडंट स्कोर दैट वेरी वेल, सो इट वाज बिट डिसहार्टनिंग एंड इट वाज बिट इट वाजंट वेरी वेरी गुड, यू नो के इट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग अ गुड गेम, बट चलो जो है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग वेरी वेल। तो वेस्ट इंडीज डिडंट स्कोर मच एंड दे यू नो वर आउट वेरी क्विकली एंड ऑस्ट्रेलिया इजीली जीत गए, सो दे आर इन द फाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम ऑन फ्राइडे, सॉरी ऑन संडे द 5th। एंड अभी कल को जो है बहुत बड़ी गेम है इंग्लैंड की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दोनों ही जायंट्स हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, गुड। बट इंग्लैंड को ये बेनिफिट है कि दे आर प्लेइंग होम क्राउड, होम ग्राउंड एंड दे आर अनबीटन एट द मोमेंट। तो ये जो कल की गेम होगी, साउथ अफ्रीका गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी गुड साइड एंड प्लस दे हैवंट वॉन द वर्ल्ड कप, सो इट इज समथिंग फॉर देम। सो एवरीथिंग टू प्ले फॉर टुमारो फॉर दैट प्लेस इन द फाइनल ऑन संडे 5th को, एंड देन वील नो हु इज इन द फाइनल एंड वील गिव यू ऑल द अपडेट्स टुमारो एंड ऑन Friday, Sunday from the ground and it's going to be a main final.
4: Okay, thank you Kamal ji, we'll wait for tomorrow aur kal zarur aapse update sunenge, apna khayal zarur rakhiyega. Thank you so much.
5: Thank you so much, have a great evening.
4: Ji.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 43 मिनट्स पास्ट 8। अब बात करते हैं जरा गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब पता चल जाएगा। एंड इस गुड न्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। सो सम मेजर सिटीज इन इंडिया हैव सीन इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी ड्यू टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, और साथ में आफ्टर स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क डेफ बरिस्ताज इन साउथ कोरिया क्रिएटेड अ कैफे where customers learn sign language while ordering coffee. Japanese hospitals are using robotic pets to comfort patients with dementia. France is turning empty buildings into homes for families in need. Ireland provides free school breakfast for children who need them the most. Bald eagles have fully recovered from near extinction in USA. ऐसी ही और अमेजिंग सी प्यारी अच्छी न्यूज आपको जरूर बताएंगे। अब जरा बढ़ते हैं आगे।
3: ये है Leica Gold 10:35 AM.
6: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: जी, हमारा पॉडकास्ट एपिसोड 22 आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्राइड मंथ ट्रेडिशंस एंड टैबूज होस्टेड बाय रेडियो वाली। इन दिस एपिसोड वी एक्सप्लोर द रियलिटीज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ LGBTQ कम्युनिटी इन अ वर्ल्ड दैट इज स्टिल लर्निंग टू अंडरस्टैंड देम। Leica एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
2: Leica एक्स्ट्रा इज हियर। This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
7: Like a gold.
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
0: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट travelhubworld.com
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
10: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ
11: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
10: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ
11: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
12: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
13: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
10: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ
14: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
15: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
14: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
8: Minar Jewelers, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या valuation करवाना चाहते हैं, तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए Minar Jewelers पर, 181 Upper Tooting Road. या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
2: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: For £1 you'll get 126.37 Indian rupee, 369.48 Pakistani rupee, 446.28 Sri Lankan rupee, 163.66 Bangladeshi taka, 84.82 Afghan Afghani, 171.72 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
4: Gold is currently trading at £98.37 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.

0: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही कि अश्विनी इस आवर का जरा आखिरी गीत सुना दीजिए। बिल्कुल, हम बढ़ते जा रहे हैं उस आखिरी गीत की तरफ। वक्त फिल्म से सुनाने वाली हूँ आप सभी को महेंद्र कपूर एंड आशा भोसले की आवाज में इस आवर का आखिरी गीत। अच्छा, वेंसडे मिड वीक मेरा फेवरेट डे है एंड आई थिंक मेरे साथ आप सबका भी ये फेवरेट डे अब धीरे धीरे बनते जा रहा है। फील गुड वेंसडे, आपको फील गुड वेंसडे में भी हमने सुनाया था पाकी साहब फिल्म से जो गीत एंड उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओ माय गॉड अमेजिंग, आई रियली लव टू लिसन टू दैट ट्रैक। आराम से बैठे हैं, बिल्कुल डिम लाइट है एंड वो गीत चल रहा है ना, एक एटमोसफियर क्रिएट होता है ना। अभी जनरली ऐसे हो जाता है कि थर्ड आवर तक आई एम श्योर आपके भी घर की लाइट्स आप लोग डिम कर लेते होंगे एंड थर्ड आवर आराम से मध्यम वॉल्यूम में एंड गीत चलते जा रहे हैं। सो वेंसडे मेरा क्यों फेवरेट है भाई, दो दिन इधर एंड दो दिन उधर बस, तो वीकेंड के इतनी करीब जब हम आ जाते हैं ना एक अजीब सी खुशी होती है एंड विथ मी आई हैव रियलाइज्ड राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड वेंसडे ना मैं अपने आप ही खुश हो जाती हूँ, है ना, पता नहीं क्या ही रीज़न है, गणपति पापा का दिन है इसलिए शायद, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स अ फील गुड फैक्टर टू बी इन गुड मूड एंड रिमेंबर दिस, आप अपने ब्रेन को जो बोलते हैं ना वो बराबर पूरे शरीर को एंड आपके थॉट्स को वो एक्चुअली फीड करते रहता है। इफ़ यू से आज का दिन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, तो आपको लगने लगता है कि हाँ आज का दिन तो बेहतर है यार, सब अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिवली चल रहा है ना, जैसे कि पॉजिटिवली हम इस आवर में बढ़ रहे हैं एंड लेके आए आपके लिए आखिरी गीत।
1: दिस इज लाइका, दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: वेलकम टू द जंगल।
3: फिल्म बिल्कुल फेक,
2: हमारी फिल्म आर्मी वाली
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: और स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
6: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
7: मैं किस लिए फिल्म में?
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे, तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
9: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
11: Lattuke halone nandala.
10: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara, khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रहे छे।
12: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आ पवित्र यात्रा पर।
14: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स।
12: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ઇટલી અને જર્મની સાથે,
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
12: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
14: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
12: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
7: અપને બિઝનેસ કો UK કે લાર્જેસ્ટ એશિયન કમર્શિયલ રેડિયો નેટવર્ક પર એડવર્ટાઇઝ કરને કે લિયે કોલ કરે. લાઇક આર રેડિયો સેલ્સ ઓન 02071321458 યા ઈમેલ કરે sales@lykameedia.co.uk.
1: The Evening Show with Ashwini. Another huge giveaway is coming.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड तीसरे आवर में वेलकम है जी। आइए आइए जुड़ जाइए इस म्यूजिकल सफर में। ये हिंदी वाला सफर ना, इंग्लिश वाला नहीं। पहला गीत आपको सुनाया था आईना फिल्म से एंड दूसरा गीत कलाकार फिल्म से खोए खोए। फैंटास्टिक ट्रैक ना, मैंने भी बहुत दिनों बाद सुना। तो व्हेन आई चूज सॉन्ग्स फॉर द शो आई मेक इट वेरी प्रोमिनेंट कि कुछ ऐसे गीत आपके लिए लेके आए जो बहुत टाइम में शायद आपने सुने नहीं होंगे। एंड फायदा ये होता है कि आपके साथ साथ मैं भी उन्हें सुन लेती हूँ। अगला ट्रैक थोड़ा सा हैप्पी वाला ट्रैक रहेगा फिर से एंड वॉल्यूम थोड़ा मीडियम से ऊपर करना चाहते हैं जरूर कर लीजिएगा।
1: Brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees and 75 paise. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Laika Gold.
3: सबके कदम देखो रम पम पम

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
1: मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच में मैच हुआ एंड मेक्सिको ने ये गेम जीता 2 गोल्स दागे. इंग्लैंड जीत चुका है भाई आज का गेम एंड बेल्जियम और सेनेगल के बीच में गेम शुरू हो चुका है. 17 मिनट्स हुए अभी तक किसी भी कंट्री के प्लेयर्स ने कोई गोल नहीं दागे. रिमेंबर यू गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: That was a beautiful track. किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. उसके पहले उठे सबके कदम बातों बातों फिल्म से. That was released in 1979. अच्छा, 1st of July किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, एंड आज के दिन बहुत सारी चीजों के नाम किया गया है आज का दिन. सो इंटरनेशनल चिकन विंग डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, ब्लिंक 182 डे, नेशनल फाइनेंशियल फ्रीडम डे, जुलाई मॉर्निंग डे, इंटरनेशनल जोक डे, नेशनल टेलीविजन हेरिटेज डे, अमेरिकन जू डे. सो दिस इज समथिंग आई फाइंड इंटरेस्टिंग विच इज इंटरनेशनल जोक डे इज द परफेक्ट डे टू लेट आउट ऑल द वफ प्रोड्यूसिंग. मतलब जोक्स जो हैं, जहाँ जहाँ से जिसको जो जोक्स सूझते हैं वो एक दूसरे को जोक्स सुनाइए, हंसिए, एंड बस प्रैक्टिस करते रहिए जोक्स बोलने की, बताने की, एंड बस उसको वैसे सेलिब्रेट कीजिए. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगने लगा है कि लोगों ने जोक्स सुनाना बंद कर दिया है आपस में, एंड उसके बजाय वो स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखने लगे हैं. स्टैंड अप कॉमेडियंस करते क्या हैं? स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो जोक्स को ही तो क्रैक करते हैं, और वो इस तरीके से क्रैक करते हैं कि हम लोग हंस-हंस के लोटपोट होते हैं. हाँ जी, कई बार बिल्कुल जो बाउंड्रीज होती हैं उसे क्रॉस करके ही वो प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड वे टू. जोक्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर लोग हंसें. आप बता रहे हो, आपके आपके दिल में कुछ तो इंटेंशन है वो जोक बताने का, एंड सामने वाला हंसे. मैनी अ टाइम्स वी हैव सीन मैनी पीपल किसी और को ऐसा कुछ तो ऑफेंडिंग बोल देंगे, ऐसा कुछ कह देंगे कि सामने वाला पर्सन दुखी हो जाता है, एंड देन दे से हाय मैं तो जोक कर रही थी, मैं तो जोक कर रहा था. नेवर डू दैट, नेवर एंड नेवर टेक दीज काइंड ऑफ जोक्स फ्रॉम पीपल, क्योंकि सामने वाला बखूबी जानता है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, एंड दे ओनली यूज दिस लाइन मैं तो जोक कर रहा था. फॉर मी जोक इज़ वेरी सिंपल. आप कुछ बताएंगे सुनाएंगे और मैं हंसूंगी, मैं कुछ बता रही हूँ आप सुनोगे और हंसोगे. दैट इज व्हाट जोक इज फॉर मी. क्या लगता है आपको?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
6: Welcome to the jungle.
7: Film? बिल्कुल fake.
6: हमारे film army वाली.
8: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
7: Danger? एकदम real. और survival skills? Zero.
6: और star cast है?
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
9: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
7: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
10: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
11: किस लिए फिल्म में?

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: टीचर्स ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर 7,500 pounds पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड लाइका 10 विजिट book.robothink.co.uk/laika
5: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
7: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जी हाँ बिल्कुल, विंटेज की याद आपको आ गई ना। शमशाद बेगम जो है हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, उन्हीं की आवाज में बहार फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। नेक्स्ट ट्रैक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हम जोली फिल्म से सुना रहे हैं आपको। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Like a Gold.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: Every morning a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit heartyhanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold.
11: Currency
0: the perfect
11: update.
0: Soundtrack for a British summer heatwave.
11: Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
12: For £1, you'll get 126.39 Indian rupee, 369.33 Pakistani rupee, 446.15 Sri Lankan rupee, 163.62 Bangladeshi taka, 84.68 Afghan Afghani, 171.71 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
13: Leica Radio.
11: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
13: Leica
11: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
12: Gold is currently trading at £97.81 per gram.
11: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
13: Like a gold.
12: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9। गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली, बिल्कुल गजल सुनाने वाली जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह की आवाज में, साथ साथ फिल्म से। ये होगी हमारी आज की गजल एंड आफ्टर गीत इस आवर का होगा बेताब फिल्म से लता मंगेशकर एंड शब्बीर कुमार की आवाज में जब हम जवां होंगे। बिल्कुल इन दो गीतों के साथ में मैंने कहना है आपसे टाटा बाय, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह बस इतना ही कहना है कि जिंदगी वे ना बहुत खूबसूरत है, इसे ना जाने क्यों हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। बिल्कुल ना करें, प्यार दो प्यार लो, एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, एंड जब किसी से प्यार करते हैं तो आप बिटर नहीं हो सकते, आप अनकाइंड नहीं हो सकते, है ना। तो अपने आप का खूब ख्याल रखिए, देखिए थर्सडे तक हम पहुंचे तो कल मनाएंगे आप और हम साथ में थ्रिलिंग थर्सडे। किसी अटपटे और चटपटे सवाल के साथ में वापस आ जाऊंगी, प्लेलिस्ट वही होगी जहां पे आप भी कहेंगे आहा उफ, एंड साथ में बता दे कि गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, इसे जरूर सुनिएगा साथ में लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। एंड सुबह सवेरे आ जाती है अपनी प्यारी प्यारी आवाज लेके हमारी काजल, उनका साथ जरूर दीजिएगा। On this note, I have to say, please take care of yourself. Love you all. I'll see you all tomorrow.
14: This is Laika Gold.
15: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
16: Ghazal.

0: largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
1: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Like a Gold.
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries, I'm having fun on PlayOjo.
3: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
4: Feel the fun. PlayOjo.
3: 18 plus gamble aware.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, Atoll Protected.
8: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ।
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
8: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
10: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਨ ਮਹਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ
11: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
8: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
14: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
16: 4 beers, please, garçon!
15: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Like a Go.

0: ये है लाइका गोल्ड CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में Houseful shows के बाद अब पहली बार London में देखिए आशुतोष राणा को as रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की undiscovered stories live on stage 9 से 12 जुलाई Eventim Apollo Hammersmith Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner like Our radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.